बाबा बाबा के दिल खमक चलाने वाला बाबा के दिल खमक चलाने वाला चलो लस जल खमक बाबा अब जर्दी केर गाने बाबा अब जर्दी केर खबावा चलो वचले लो ततो يلا سلا القبائل